0: खतरों के खिलाड़ी every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colors and watch it anytime on Jio Hotstar.
1: Bollywood के legend कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
5: Like a gold par har raat ki yahi reet, purane magar sada bahar geet.

हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर।

मन कोए मने सुध होवे मन बुद्ध मने सगल पवन की सुध मने मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने मार्ग ठाक ना पाए मने पत्स्यों प्रगट जाए मने मग ना चले पंथ मने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन हुए।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

आहत जुग जुग एको वेश भूत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी हृदय सिद्ध अवरासाद।

आद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच्छ

0: है लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
3: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
5: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: हमारी रक्षक है वो।
2: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
2: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
4: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
5: Gold Breakfast with Kajal on Like a Gold.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट TravelHubWorld.com.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. Backstage Siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek sham soulful music, devotion aur energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: हमारी रक्षक है वो.
5: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
6: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
5: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
7: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
8: Gold Breakfast with Kajol.

0: Like a goat.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra. Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 Our line.
5: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 0734-520-666.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
7: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
9: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
10: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
9: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
10: Rich, authentic taste every single time.
9: Royal Chai, brewed for business.
10: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
11: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
12: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th. Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: Gold Breakfast with Kajal.
14: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
2: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
1: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
2: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
1: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
3: Dosti, masti ane emotions ni ek anokhi story.
4: સામડે કામ કર મેડિકલ દેલે અને નાખતા જઈએ
5: નાખતા જઈએ એટલે
3: સોલ સૂત્ર પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ મિત્રતા ફ્રેન્ડશિપ ની લવ સ્ટોરી પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ માનસી પારેખ ડિરેક્ટેડ બાય ઓનિલ કર્ણિક
6: તો અંડો છે
7: આગળ વાળો બ્રેક મારે તો પાછળ વાળો બ્રેક મારે છે યાર
8: કારી મારી દોસ્તી
3: સ્ટારિંગ વિરાજ ખિલાણી દીપ વૈદ્ય વિશાલ પારેખ એન્ડ વિશ્વા જોશી રિલીઝિંગ ફ્રાઈડે 25 સપ્ટેમ્બર યુકે રિલીઝ ડિટેલ્સ માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો બકરાનિયા મીડિયા.
9: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
10: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
11: हैरो, इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान. साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो. स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन. खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
12: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन. 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइसलिप HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ. वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-228-7509.
13: sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call Sona Tours now on 0208-951-0111.
14: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold. Feel good classics all day. Leica Gold.

0: बुधवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 23 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का, यहाँ 10:05 हुआ चाहते हैं ब्रिटिश घड़ियों में। मैं हाजिर हूँ, हाँ, माय नेम इज रवि शर्मा और बहनों भाइयों, दोपहर बाद 1 तक मैं ये कार्यक्रम लेकर आपके साथ हूँ। आप भी मेरे साथ हैं ना, जहाँ भी हैं, काम पर हैं, घर में हैं, सफर में हैं, अरे साहब आपका हर काम आसान हो जाएगा। मुलाकात की इच्छा है, एक छोटी सी बात की इच्छा है, आपसे एक सौगात की इच्छा है, क्योंकि हफ्तों उनसे मिले हो गए, विरह में हम पिलपिले हो गए, सद के जूड़ों की ऊंचाइयां सर कई मंजिले हो गए, डाकिए थे जब लव उनको हुआ, खत हमारे डिले हो गए, परसों शादी हुई कल तलाक, क्या अजब सिलसिले हो गए, उनके वादों के ऊंचे महल क्या हवाई किले हो गए, और नौकरी रेडियो में मिली, दोस्तों के गीत रिले हो गए।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica Gold. Non-stop classics.

0: बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए भाई आ गए हम इस मोड़ पर। आज है 23 सितंबर और जब इतिहास में झांक के देखते हैं भाई क्या महत्व है आज के दिन का, क्या क्या बातें जुड़ी हैं आज के दिन के साथ, तो बता दें भाई आज 23 सितंबर 2026 भारतीय इतिहास में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व के इतिहास में कई बातें जो है वो जिक्र करने के काबिल हैं भाई। भारत में तो जो हिंदी प्रेमी है आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मना रहे हैं। बड़ा प्रतिष्ठित नाम है, बड़ा भाई क्या कहें, वो सुपर्ब क्वालिटी की कविताएं उनकी जो मिलती हैं, कभी कभी हम भी अपने कार्यक्रमों में जिक्र करते हैं उनकी कविताओं का। 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया में हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था और साहब राष्ट्रकवि वो बने, पार्लियामेंट में भी गए और बड़े सुलझे हुए कवि भी थे, लेखक थे और एक राजनीतिज्ञ भी साबित हुए। दिनकर केवल कविता लिखने वाले कवि नहीं थे। 23 सितंबर 1918 में हाइफा का युद्ध जो है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान 23 सितंबर 1918 को हाइफा की लड़ाई में हिंदुस्तानी घुड़सवार सैनिकों ने क्या रोल अदा किया था साहब, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 23 सितंबर 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, वो रुका, वो प्रभावी हुआ सीज फायर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनाइटेड नेशंस द्वारा युद्ध विराम यानी सीज फायर 23 सितंबर को प्रभावी हुआ। और साहब आज ही के दिन एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। भाई है तो गूंगे बहरों के लिए वो ना सुनाई उनको नहीं देता है, लेकिन वो शब्द ठीक नहीं लगता था कि बधिर दिवस इसे कहें, इसे अब इस रूप में मनाया जाता है कि सांकेतिक लैंग्वेज यानी संकेत से, इशारों से भाषा को, शब्दों को समझाना, तो उसके लिए ये आज का दिन है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना बधिर समुदाय के, डेफ कम्युनिटी जो है ना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। कला और सिनेमा में अगर देखें भाई, बॉलीवुड में किसका जन्मदिन है, बॉलीवुड में आज अपना जन्मदिन मना रही हैं तनुजा, 23 सितंबर 1943 को जन्म हुआ था उनका। और भी कई लोग हैं भाई, कुमार सानू हैं जिनका गीत एक आप सुन चुके हैं, प्रेम चोपड़ा है, सोचिए जरा विलेन पर भी कोई गीत पिक्चराइज हो सकता है, सुनवा देंगे हम आपको कार्यक्रम में, सुनते रहिएगा। और भी कुछ लोगों के जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आज पाउंड का रेट क्या है भारतीय रुपए के मुकाबले, लेट्स फाइंड आउट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. Today, they are giving 126.9 Indian rupees for one pound. 126 रुपए 90 पैसे का रेट, नहीं ज्यादा है, नहीं यही है, 126 रुपए 90 पैसे मैक्सिमम, दैट्स इट। यस, यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold. Tum dena
3: saath mera. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.

0: 1969 की फिल्म तलाश, और भाई एस डी बर्मन का संगीत, थोड़ा बंगाली टेस्ट भी था इसमें। आज को जुनली रात में करवाते रहिए ट्रांसलेशन।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Aur bhai bhaiyo ek sandesh, well Diwali story ke bare mein, final few days to go to the Diwali story brought to you by Sanatan Events and exclusive radio partner of course Laika Radio Network. It takes place at OVO Wembley Arena on Sunday 27th September. Doors open at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. aur uske baad main performance शाम 6:15 बजे से रात 9:30 बजे तक। टिकट्स के लिए www.diwalistory.com. Got it?
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
0: समय हो गया है समाचारों का, और भाई खबरों की ओर जाते हुए एक शब्द आजकल भारत में बहुत चर्चित है, उसे कहते हैं SIR। और ये SIR लागू किया जा रहा है, कई राज्यों में तो हो चुका है और इसका कहीं पर विरोध भी हो रहा है। SIR क्या है भाई? SIR आपको बता दें कि ये एक चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा शब्द है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता वोटर लिस्ट का विशेष गहन खास तौर पर एक बार पुनर्निरीक्षण, रिव्यू। अब ये इस पर चर्चा हो रही है, इस पर बहस हो रही है भारत में। आइए, ये तो मेन खबर है, इसके अलावा और क्या क्या खबरें हैं आज के प्रमुख समाचारों में। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। SIR पर इलेक्शन कमीशन की असहमति के दावे पर चुनाव आयोग का बयान आया है। वेटलिफ्टर मीराबाई चनू ने एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल। मध्य प्रदेश में व्यापारियों का नो UPI डे। एशियन गेम्स 2026 मनु भाकर मेडल से चूकी, फाइनल में 5वें नंबर पर रही। ईरान को तबाह करने की धमकी देने के बाद बोले ट्रंप, उनसे अच्छी मुलाकात हुई। पर पहले SIR क्या है, क्या बहस चल रही है? भाई चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने आज एक रिपोर्ट जारी की है, प्रेस नोट जारी किया है, और उसमें आयोग के सदस्यों की ओर से उठाई गई टिप्पणियां, सुझाव और सवाल उसकी सामान्य इंटरनल प्रोसेस का हिस्सा है। कमीशन ने अपने बयान में कहा कि इसका उद्देश्य चुनाव प्रोसेस को और बेहतर, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी और कानून के अनुसार बनाना है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि भाई ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का तरीका है। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स ने बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है, मतलब वो उनसे इत्तेफाक नहीं करते हैं और इससे हंगामा शुरू हो गया है। इंटरनेशनल समाचारों में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का अमेरिका में ऐसे स्वागत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कैसे? कहते हैं भाई वो आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आज अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंचेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर उन्हें वेलकम करेंगे, कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। इसके बाद कल व्हाइट हाउस में उनके लिए एक फॉर्मल वेलकम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इस दौरान मिलिट्री फ्लाईओवर होगा और करीब 500 फौजी इस समारोह में, सैन्यकर्मी समारोह में शामिल होंगे। जिनपिंग का अमरीकी दौरा शुक्रवार को खत्म होगा, और इस दौरे के दौरान कई फॉर्मल प्रोग्राम्स के अलावा भव्य डिनर, शानदार डिनर, प्राइवेट विजिट्स और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। भारत से आने वाली खबरों में लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर और कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के रोल पर सवाल उठाए हैं और चुनाव अधिकारियों के लिए कहा है कि वो गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान उस वक्त आया है जब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है। अमेरिका से 3 घंटे तक हुई बातचीत को लेकर के ईरान का क्या रुख स्पष्ट हुआ है। ईरान ने इस बात की पुष्टि की है कि न्यूयॉर्क में चल रही यूनाइटेड नेशंस महासभा के इतर उसकी अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव से बैठक हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क कतर के को बीच में लेकर के मध्यस्थ के जरिए हुआ था। इस्माइल बकाई ने कहा कि पिछले हफ्ते ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट क्षेत्रीय सुरक्षा और डिप्लोमेसी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था। इसके बाद न्यूयॉर्क में ईरानी रिप्रेजेंटेशन ने अमेरिकी पक्ष तक अपनी मांग स्पष्ट रूप से रखी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हमलों के बाद मिडल ईस्ट की एनर्जी सप्लाई के लिए अल्टरनेटिव रास्ते जरूरी हो गए हैं। ट्रंप ने यह बात न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज्ड एक यूनाइटेड नेशंस की महासभा के वार्षिक सत्र से इतर अलग गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और अरब नेताओं के साथ हुई बैठक के दौरान कही। भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 5वां नंबर हासिल किया। वो पदक जीतने से चूक गई हैं। मनु ने फाइनल में 181.1 अंक हासिल किए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कल कहा था कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई करनी होगी, तभी दुनिया को उसके बयानों पर विश्वास होगा। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कल वीकली प्रेस ब्रीफिंग में ये टिप्पणी की। दरअसल उनसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस बयान पर रिएक्शन मांगा गया था, जिसमें उन्होंने मुल्क में बढ़ते उग्रवाद के खतरे के बीच आतंकवाद को हराने के लिए हथियारबंद फोर्सेज के मजबूत संकल्प की बात कही थी। इस पर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को कार्रवाई करने और मजबूत प्रतिबद्धता दृढ़ निश्चय दिखाने की जरूरत है। उसे बॉर्डर पार आतंकवाद के खिलाफ कोई भरोसेमंद कार्रवाई करनी होगी। तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयिप अर्दोगान ने न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज्ड यूनाइटेड नेशंस महासभा के 81वें सेशन को एड्रेस करते हुए कश्मीर का जिक्र किया। वर्ल्ड लीडर्स के सामने उन्होंने अपने एड्रेस में दक्षिण एशिया में शांति के लिए कश्मीर विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की वकालत की है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक हो चुकी है। बैठक में अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हुए थे। ट्रंप ने कहा कि अच्छी बैठक थी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने गाजा पट्टी में शांति कायम होने से जुड़े अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर सवाल उठाए हैं। यूनाइटेड नेशंस के सालाना सेशन में मैक्रों ने कहा कि शांति के ऐलान के बावजूद गजा में अभी तक कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यानी मानवीय गलियारा दोबारा नहीं खोला गया है। मैक्रों ने गजा की हालत को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने ये एक ऐसा नजारा है जिस पर सभी को शर्म आनी चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: The Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: संगीत की ओर लौट आइए। अमित कुमार और अलका याग्निक किस परमिट की बात कर रहे हैं?

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: ये है लाइका गोल्ड
2: हॉलिडे ब्रेक्स अ ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल ट्रेवल.
3: और साउथ ओल ट्रेवल याद दिला रहे भाई, दे आर नोन फॉर देयर कॉम्पिटिटिव हॉलिडे डील्स टू दुबई. तो कॉन्टैक्ट साउथ ओल ट्रेवल टुडे ऑन 0208574 8410. साउथ ओल ट्रेवल, दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
1: Like a goat.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208782833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
2: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए
3: એટલે
1: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
4: तू गांडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार तारी मारी
1: दोस्ती स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी रिलीजिंग फ्राइडे 25 सितंबर यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
9: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
9: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages. The broker that gives you back.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Ravi Sharma Show on Leica Gold.
11: वेरी गुड मॉर्निंग भाई. आज तनुजा जी का जन्मदिन है और मुझे याद है वो समय जब एक खुली बस में तनुजा और उनकी बेटी काजोल और भाई शाहरुख खान उनकी पत्नी और भाई उनके और भी जो है ना दूसरे कलाकार शिल्पा शेट्टी और साहब अनु मलिक अब्बास मस्तान इन सब के साथ हम लंदन भर में घूमे थे. कई सिनेमा हॉल में हमने स्टेज पर जो है फिल्म का जो प्रीमियर था वो सेलिब्रेट किया था. थोड़ा बहुत बोलने का मौका शाहरुख बोले थे. तो इस तरह से भाई वो याद आती. वही एक मुलाकात तनुजा जी से हुई थी. और अगर हम तनुजा जी से पूछें, तनुजा जी क्या ख्याल है हमारे बारे में?
12: हाँ, पूछे

ये गीत भाई उनके स्वर्गीय पति देव सोमू मुखर्जी के लिए हो सकता है। 83 बरस की हो गई है तनुजा जी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू मैडम।

0: याद आ रही होंगी आपको वो फिल्में भाई, हाथी मेरे साथी, जीने की राह, मेरे जीवन साथी। भैया जी तनुजा जी की याद है, कुछ और कलाकारों को भी याद करेंगे, नूतन की बहन, शोभना समर्थ की बेटी, और भाई परिवार में कितने ही एक्टर हैं इनके। हैप्पी बर्थडे तनुजा जी।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो भाई हम आपको रेट बताते हैं, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.15 रुपीस, अफगान अफगानी 84.98, पाकिस्तानी रुपए 368.49, बांग्लादेशी टका 163.5, श्रीलंकन रुपए 437.79 एंड मॉरिशन रुपीज 63.57।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 104.4 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
0: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
7: हमारी रक्षक है वो।
8: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
9: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
8: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया, इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
3: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट्जरलैंड विद मंत्रा हॉलीडे सीनिक स्विस टूर, फ्रॉम द स्टनिंग स्विस आल्प्स टू इंटरलाकन, लुसर्न, माउंट एटलस एंड more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
14: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
15: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे। कॉल ऑन 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन रवि शर्मा के साथ, दैट्स माय नेम। और हेलो भाइयों, मैं दोपहर बाद एक बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं। लेकिन अब इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, यह समय चिंतन का है। मैं प्रस्तुत करता हूं थॉट फॉर द डे, जिसके लिए आज हम धन्यवाद देंगे श्री प्रमोद कैट जी का, जो कहते हैं कि देखिए कि धार्मिक संस्था का चेयरमैन होने के नाते बड़े अनुभव अर्जित किए हैं। पब्लिक लाइफ से भी मैं जुड़ा हुआ हूं, काउंसलर भी रहा हूं, बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे वो, लेकिन ये जो अनुभव है मैं आपके चिंतन के माध्यम से लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। स्वागत है सर। लेकिन साथ में कहते हैं रवि जी, आप एक गलती भी सुधार लीजिएगा। कल आपने अनाउंस किया था कि वो सरस्वती जी की ओर से कि हमारे यहाँ जो साध्वी सरस्वती देवी जी के कार्यक्रम, जो व्याख्यान है, प्रवचन है, वो 22, 23, 24, 25 को हैं। नहीं जी, वो सिर्फ 22 और 25 को हैं, तो लोगों को बता दीजिएगा। लेकिन व्याख्यान सुनने के लिए कल काफ़ी भारी भीड़ जमा हुई थी, भोजन की व्यवस्था भी रही है, तो आप भी इनवाइटेड हैं। थैंक यू सर। कहाँ? लक्ष्मी नारायण मंदिर 69 नेविल क्लोज हाउंसलो मिडल सेक्स। थैंक यू वेरी मच। आप देव प्रमोद गैडी जो बात बता रहे हैं वो ये कि भाई हमें दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे और एक ही विषय पर अलग अलग बयान देंगे। किस पर भरोसा किया जाए, अपने आप से ये प्रश्न कीजिएगा। अकबर बीरबल के किस्से आपने बहुत सुने हैं। प्रमोद जी कहते हैं कि अकबर को खुश रखते थे बीरबल और बीरबल की बातों को बहुत मान देते थे अकबर। अकबर ने एक बार भोजन किया तो कहने लगे, बीरबल आज मैंने बैंगन की सब्जी खाई, कुछ अच्छी नहीं लगी। बीरबल बोले, बैंगन इसीलिए तो उसको कहते हैं बैंगन, यानी बेगुण, उसमें कोई गुण नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, अच्छा नहीं है। अकबर सोचने लगे, मैं जो भी बात कहता हूं बीरबल उसकी हां में हां मिला देते हैं। अगले ही दिन उन्होंने फिर कहा, बीरबल सुनो आज मैंने बैंगन की सब्जी खाई, बहुत स्वाद लगी, बहुत अच्छी थी भाई, बढ़िया। कहते सर इसीलिए तो उसका नाम है बैंगन, यानी बहुगुण, बहुत सारे गुणों की खान, भंडार। अकबर बोले, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे खुश कर रहे हो या सब्जी वाले को खुश कर रहे हो कि उसके बैंगन में बहुत सारे गुण हैं। कहता सर सब्जी वाले से मुझे क्या लेना है, आपके राज्य में पद पर सुशोभित हूं, वेतन आपसे लेता हूं, सब्जी वाले से नहीं। इसलिए आप जो समझते हैं, जैसा महसूस करते हैं, मैं उसे ही स्टैंप लगाता हूं। लोग खुश करने के लिए आपके मन को भाने वाली बात कहते हैं। अगर सच सच बता दें तो भाई वो कड़वी भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, और वो आपको नाराज भी कर सकती है। इसीलिए दुनिया में रहते हुए हमें हर तरह के सुझाव सुनने को मिलते हैं, हर तरह के मत, लेकिन असली जवाब आपको अपने भीतर से मिलेगा। अपने आप से पूछिए, वही होगा सही जवाब, बीरबल ने समझाया।

0: आज बना वो लाखपति, कल तक था जो कड़का।
1: कल तक लोग उसे रामू कहते थे, आज वो सेठ रामलाल कहलाने लगा। ये तो भाई रामू ही जानता है वो क्या है कैसा है। दुनिया कुछ भी कहेगी, अपने बयान बदलती रहेगी।

0: घड़ी में तोला घड़ी में मासा। दुनिया के अलग अलग विचार अलग अलग मत, भाई उनकी सुनोगे ना पागल हो जाओगे। अपने भीतर से सवाल का जवाब मांगिए, विचार कीजिए, उसी का नाम चिंतन है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार जिसके लिए आलेख हमें प्रमोद कैट साहब ने भिजवाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर याद दिला दें, उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट कर दें सबको कि साध्वी सरस्वती देवी जी का व्याख्यान 25 तारीख को है 11:30 बजे से उनके मंदिर में। और आप जल्दी स्वस्थ हों प्रमोद जी, ये भी हम दुआ करते हैं। रिसेंटली भाई उनका नी ऑपरेशन हुआ है, ईश्वर जल्द उन्हें स्वस्थ करें और सेवा के कार्यों में और अधिक वो समय दे सकें, ऐसी योग्य बनाएं। चिंतन के साथ जो गीत आपने सुना, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म लाखों में एक, रफी साहब और साथियों की आवाजों में था। और बहनों भाइयों, ये भी याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that if you want to send money to India, there are attractive rates at this moment. By aaj ka rate main bata raha hu aapko, 1 pound ke badle they are giving 126.9 rupees max.

0: मैक्सिमम 126.90 रुपए अधिकतम एक पाउंड के बदले दिए जा रहे हैं। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Gold.
1: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there.
4: Southall Travel, at all protected.
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु,
7: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
5: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र।
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
9: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Book online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
12: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place.
12: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963.

0: आशा जी और किशोर देखिया वैसे तुम्हें सुन रहे थे आप ये गीत भाई बैक टू बैक संगीत सुनवाया हमने क्रमबद्ध होता है हर घंटे में
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार
0: जरूर जरूर भाई वो हंसने वाली बात भी ढूंढेंगे और सुनवाएंगे आपको लेकिन उससे पहले बताएंगे कि कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ जियो हॉट स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप तो ये थी भाई सूचना आप तक पहुंचानी थी और अब सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार लेकिन कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं भाई रोना पड़ जाता है वो रोए क्यों आपको वो ब्लेम गेम नहीं आता सुनिए साहब वो भी बड़े काम की चीज है
2: ओ संता संता तेनू पता है अपने मालकां दी बिल्ली मर गई है
3: बिल्ली मर गई है
2: ओ तू क्यों रोंदा संता बिल्ली तो मालकां दी मरी है आपा ता नौकर है
3: तेनू नहीं पता बंतो हुण मैं सारा दूध पी के किसदा नाम लावांगा पहला बिल्ली दा नाम लाउंदा सी
4: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a Extra Podcast Update.
3: और आपको याद दिला दें भाई, लाइका एक्स्ट्रा में हमारा नया पॉडकास्ट एपिसोड 34 उपलब्ध है, जरूर देखिएगा ये। दिस इज होस्टेड बाय दीप राजा और इसका टाइटल है मॉडर्न हैरेसमेंट। कितने तरीकों से भाई लोगों को हरेस किया जाता है और क्या क्या तरीके हैं उनसे उनका सामना करने के लिए। दीप राजा स्पीक्स टू संगीता पांडे ऑफ IIW एंड गायत्री शेनॉय, प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट, अबाउट मॉडर्न हैरेसमेंट। और भाई वो विचार करते हैं ऐसी ऐसी समस्याओं पर जो हरेसमेंट की हैं और कितने तरीके हैं उसके, कैसे उनसे निपटा जा सकता है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन Spotify, YouTube, Amazon, Apple एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जरूर देखिएगा।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है लाइका गोल्ड
3: ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
6: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
7: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snill Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
6: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
8: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
3: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
2: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
3: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
2: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
4: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
2: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
5: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: Like a Goon. London ka number one Asian retro music station ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe
8: Om Mangal Budh Veer Shukr Shani Itwar 7 dino mein hansna chahiye kam se kam 700 baar
9: सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार लेकिन इस बात पर कैसे हंसे भाई हमारे एक दोस्त हैं सुबह सुबह मिठाई बांट रहे थे खाइए मिठाई खाइए मैंने कहा क्या हो गई मैंने कहा तुम्हारी शादी की बात पक्की होगी हाँ हाँ कहता है 50% पक्की हो गई है 50% कहता हाँ 50% मतलब मैं तो तैयार हूँ मैंने कहा लड़की कौन है वो बात चल रही है ना किससे बात चल रही है जाह्नवी कपूर की फैमिली से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है दो तीन चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ मैंने कहा यार कमाल है क्या चॉइस है चॉइस को छोड़ मेरा कॉन्फिडेंस देख हो गया तो हो गया अब आगे भाई शादी पक्की हो ना हो एंगेजमेंट हो ना हो अपुन ने तो प्यार कर लिया मैं कहा प्यार किया नहीं जाता हाँ हाँ हो जाता मुझे हो गया

भाई चिट्ठियों का जवाब नहीं आया तो भाई हमारा ये दोस्त पहुंच गया जाह्नवी कपूर के घर और जाके कह दिया जी मैं जाह्नवी से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद साहब अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, बोनी कपूर, सारे कपूरों ने मिलके जो ठुकाई की भाई की, पर वह बाहर फेंक दिया। जब कपड़े झाड़ते पूछता है, अच्छा तो इसका मतलब है शादी के लिए फिर ना समझूं।

दिल करता है कि बिल तेरे नाम कर दूं। अरे भैया, मरने से पहले दिल करता है कोई काम कर दे तो फिर दिल लाकर अपने बराबर वाला प्लॉट मेरे नाम कर दे, अपना बैंक बैलेंस मेरे नाम कर दे। यार दिल तेरे, दिल तो

दिल को एक खिलौना समझा, खेल लिया और ठुकराया। भाई ये बैक टू बैक संगीत में दो गीत हमने परोस दिए आपको। पहला गीत आने से उसके आए बाहर, आज तनुजा जी का जन्मदिन है, उनकी फिल्म थी वो जितेंद्र के साथ, आपने एंजॉय किया गीत। इस भाग में, तीसरे भाग में पहला गीत जीने की राह फिल्म से। और अब ये जो गीत चल रहा है इसमें भाई जन्मदिन मनाने वाले प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। आप कहते हैं भाई विलेन के साथ कोई गीत कम ही होते हैं फिल्मों में विलेन के होठों पर गीत, पर विलेन के होठों पर तो नहीं लेकिन विलेन इश्क फरमा रहे हैं बबीता के साथ इस गीत में। और किसको जला रहे हैं? राजेश खन्ना को। डोली फिल्म का गीत है जिसमें भाई इस गीत में, पूरे गीत में बबीता और प्रेम चोपड़ा नजर आते हैं। प्रेम चोपड़ा इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, ही वाज बोर्न ऑन 23rd ऑफ सितंबर इन 1935। 91 बरस के हो गए जनाब, लाहौर में जन्मे थे 1935 में। और क्या भाई विलेन है वो, आपको बताएं सारी फिल्मी फैमिली से आते हैं। वैसे तीन बच्चे हैं इनके, और सुनिए इनकी रिश्तेदारी में कौन कौन शामिल हैं। शर्मन जोशी इनके दामाद हैं, विकास भल्ला इनके वहाँ भी सन इन लॉ हैं, वो भी प्रेमनाथ ब्रदर इन लॉ, राजेंद्र नाथ ब्रदर इन लॉ, नरेंद्र नाथ वो भी ब्रदर इन लॉ, राज कपूर को ब्रदर इन लॉ। क्या बात है भाई, मतलब फिल्मी फैमिली से आते हैं। राज कपूर भी इनके रिश्तेदार हैं, प्रेमनाथ और वो तो है ही नरेंद्र नाथ राजेंद्र नाथ, लेकिन प्रेम चोपड़ा से भाई अब आप कहेंगे कि वो सबसे मिले हो तो आप भाई यहाँ क्या कर रहे हो। वो सब देखिए, लंदन में मैं राजेंद्र नाथ इसने प्रेम चोपड़ा जी से मिला एक फिल्म में, सावन कुमार टाक की फिल्म थी, और वो फिल्म में मतलब काम करने के लिए नहीं, हम सब ने बैठ के एक फिल्म देखी, इनकी फिल्म थी, रिलीज़ हो रही थी यहाँ, और सावन कुमार का कहना था कि आपको हमारे साथ बैठ के देखनी होगी फिल्म, तभी आप उस फिल्म पर चर्चा कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। और भाई उस फिल्म में एक डायलॉग था प्रेम चोपड़ा, वैसे तो ये सब ने सुना है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। अब भाई मैंने कहा वो तो ठीक, लेकिन एक उस फिल्म में डायलॉग था, मेरा नाम अजगर है, अजगर सिंह, अजगर काटता नहीं निगल जाता है। तो भाई प्रेम चोपड़ा साहब आपकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं हम। 91 के हो गए, शतक लगाई और फिर धूमधाम से मनाएंगे भाई प्रेम जी का जन्मदिन। तो अगर आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वैसे जन्मदिन मनाने वालों में और भी कई नाम शामिल हैं आज, जैसे कि कौन बना रहे, मोहन चंद शर्मा, सुना ये नाम, कैसे सुनेंगे साहब। मोहन चंद शर्मा सचमुच में एक पुलिस इंस्पेक्टर हीरो थे, उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और भी जो सम्मान है भाई, भारत में दिल्ली में ये पुलिस इंस्पेक्टर थे और आतंकवादियों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे, काफ़ी चर्चित हुए थे मोहन कुमार शर्मा। तो उनका भी जन्मदिन आज ही पड़ता है 1965 में।

0: जन्मे थे। और हाँ, बटला कांड जिसको कहते हैं, जिसमें ये आतंकवादियों से भिड़े थे। अंबाटी रायडू नाम सुना है कि नहीं, भूल गए? अरे साहब, जाने माने क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम में अच्छा खेलते थे, इंडियन क्रिकेटर, तो वो भी आज ही जन्मे थे 1985 में। और भाई बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ मैं नाम लेना चाहता हूँ हिंदी के प्रतिष्ठित कवि रामधारी सिंह दिनकर का। आज जन्मे थे 1908 में। और बहन भाई, कोई कविता याद है उनकी? तो कुछ लाई नहीं। हाँ, मुझे याद आ रही है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। शब्दावली पे ध्यान दीजिए। अरे भाई, लोग वैसे कह, जा तुझे माफ किया। अरे माफ तो करना उसका होता है जो ताकतवर हो, जो कैपेबल हो। पीछा छुड़ाने के लिए माफ किया, नहीं तो क्या कर लेता। क्षमा शोभती उस भुजंग को, माफी तो उसका उसकी बनती है देनी, माफी तो वो दे जो ताकतवर हो, जो वो उस भुजंग को, सांप को कहते हैं भुजंग, क्षमा शोभती उसको शोभा देती है जिसके पास गरल हो, जिसके पास जहर हो, विशाल ताकतवर जहरीला फुर्तीला जो सांप हो, जो काटे तो को उसका शिकार पानी ना मांगे और वो माफ करे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास कर लो, उसको क्या जो दंतहीन, जिसके दांत तोड़ दिए गए हों, उसको को क्षमा शोभा नहीं देती जो दंतहीन विषहीन जिसमें जहर भी ना हो, और विनीत जो दुबका डरता रहने वाला, छुपके रहने वाला, विषहीन विनीत सरल हो, सीधा साधा हो, वो कहे कि मैंने माफ किया। नहीं भाई, तुम तो खुद माफी के काबिल हो। छोड़िए साहब, ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता, एक एक शब्द का कितना बड़ा अर्थ है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जहर को गरल कहते हैं संस्कृत में, उसको क्या जो दंतहीन बिना दांतों का, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: ये तो कहना भूल ही गया भाई, आपके घर में अगर किसी का जन्मदिन है तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। और रिटर्न्स पैसे भेजना चाहे उसको, जन्मदिन मनाने वाले को, भारत में अगर कोई है तो लेट मी टेल यू द रेट। आज इस समय जो रेट मिल रहा है SBI की ओर से, नोट कीजिए, 1 pound could get you maximum 126.9 Indian rupees. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our gold.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
2: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
11: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
11: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
11: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
12: Harrow, famous Spice Village, is now open in Harrow. Sizzling mixed grills, signature masala fish, rich, delicious karais, and fresh naan straight from the tandoor. And with one of the biggest vegetarian menus prepared in a separate vegetarian kitchen. So bring your family, bring your friends, and taste the award-winning flavour of Spice Village. Find us at 1 to 4 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village, Harrow, now open. Your new place to eat, meet, and celebrate.
13: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
14: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
15: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sona Tours now on 0208 951 0111.
16: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
17: I left behind everything I knew.
16: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
17: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
16: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
18: દોસ્તી મસ્તી અને ઇમોશન્સ ની એક અનોખી સ્ટોરી
19: સામડે કામ કર મેડિકલ દેલે અને નાખતા જઈએ એટલે
18: સોલ સૂત્રા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ મિત્રતા ફ્રેન્ડશિપ ની લવ સ્ટોરી પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ માનસી પારેખ ડિરેક્ટેડ બાય ઓનિલ કર્ણિક
20: તો અંડો છે
21: આગળ વાળો બ્રેક મારે તો પાછળ વાળો બ્રેક મારે છે યાર
22: તારી મારી દોસ્તી
18: સ્ટારિંગ વિરાજ ખિલાણી દીપ વૈદ્ય વિશાલ પારેખ એન્ડ વિશ્વા જોશી રિલીઝિંગ ફ્રાઈડે 25 સપ્ટેમ્બર યુકે રિલીઝ ડિટેલ્સ માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો બકરાનિયા મીડિયા
23: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
24: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Aur bhano bhaiyo, Artist of the Week hain Sushree Kanth Kokila. कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम कविता जी आ रही हैं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम उनके पूज्य पतिदेव का नाम है 1999 में उनके साथ शादी के बंधन में बंधी थी कविता जी

पत्नी जब नींबू मंगवाए ना, पति को फिक्र हो जाए, यही कि भाई घर के खर्चे बढ़ने वाले हैं, मुल्क की आबादी बढ़ने वाली है, ऐसा लगता है। तो पत्नी समझाती है, नींबू मंगा रही है चाट मसाले के लिए, ऐसे ही हर बार में अपनी कुछ का कुछ सोचे जाते हो। कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भाई कविता जी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, कितनी भाषाओं में गाए हैं उन्होंने, और पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति भारत सरकार द्वारा सम्मानित, कितनी भाषाओं में, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, राजस्थानी, भोजपुरी, तेलुगु, उड़िया, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, मलयालम, गुजराती, नेपाली, असमी, कोंकणी, पंजाबी में भी गाए हैं निबुड़ा।

0: याद दिला दें हम अपने श्रोताओं को भाई, कविता कृष्णमूर्ति आ रही है, द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे द 1st November, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर इज लाइका रेडियो नेटवर्क। यस,
1: लाइका गोल्ड, लाइका रेडियो नाउ इन मोर प्लेसेस देन एवर बिफोर, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड।

0: मैं आ भी जाऊंगी यहाँ।
1: ऐसे गाना गाया था तो सामने से लड़की कहती है,
0: देख लो फिर ये मत कहना क्यों आई।
1: आ भी जा वाले सॉन्ग भाई, ये गीत आपने सुना। और अब एक दो मैसेज क्या भाई, वो नाराज हो गई है। शैरी ब्लेयर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ टोनी ब्लेयर की पत्नी, कहती है अपने अपनों के नाम लिए जा रहे हैं, उसका बर्थडे, उसका बर्थडे, कवि का बर्थडे, एक्टर का बर्थडे है, हमारा कोई ख्याल नहीं है। मैडम है, नाराज मत होइएगा भाई, आज शैरी ब्लेयर भी अपना जन्मदिन मना रही हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू मैडम। ठीक है, मैं अपने साथ आपकी तस्वीर जो पार्लियामेंट में ली थी वो लगा दूंगा आज सोशल मीडिया पर। थैंक यू। और बहनों भाइयों, आपके घर परिवार में भी किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से बधाई शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। एक गायक कलाकार है, तमिल कोलंबो में जन्मा था, अर्जुन नाम है उसका, अर्जुन राणा तुंगे नहीं, क्रिकेट वाला नहीं, ये अर्जुन गायक कलाकार है, उसका भी आज बर्थडे है। 1990 में जन्मा था तो 36 का हो गया है। और भाई और भी कई लोगों के जन्मदिन है भाई, सबको बधाई शुभकामनाएं मंगल कामनाएं। अब साउथ ऑल ट्रेवल वाले फिर याद दिला रहे हैं कुछ।
2: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रेवल।
1: क्या कह रहे हैं, साउथ ऑल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कम्पेटेटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। जाने माने हैं भाई इस फील्ड में, तो खासकर दुबई के लिए उनकी डील्स। मैं दुबई भी गया हूँ और भाई मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा ट्रिप उन्होंने तैयार किया था, ग्रैंड कैनियन का अमेरिका में, और भाई हॉलीवुड और उसके बाद लास वेगास और भाई ग्रैंड कैनियन सारा घुमाया पूरे परिवार का, उसमें प्लेन भी, होटल भी, हेलीकॉप्टर भी। साउथ ऑल ट्रेवल बल्ले बल्ले, कुलजिंदर जी सुन रहे हैं आप, ओके आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। साउथ ऑल ट्रेवल भाई दुबई की डील्स के लिए आपको कहते हैं कि कॉन्टैक्ट अस 0208-574-8410। साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: ये है Like a Gold
1: TravelHubWorld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Lyco Radio Network.
7: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 0746699755। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 0746699755।

फिल्मी दुनिया में एक जमाना था भाई, कुमार नाम बहुत पॉपुलर हो रहा था। राजेंद्र कुमार, राजकुमार, दिलीप कुमार, सारे कुमार। कुमार का अर्थ पूछा किसी ने, भाई कुमार का अर्थ होता है कुमार ना कुमारा।

0: बिल्कुल कंवारा है, पक्का कंफर्म्ड कंवारा है, रजिस्टर्ड कंवारा है, कंफर्म्ड। नहीं नहीं नहीं, इसके पर ना भी विश्वास करो, कम से कम इसके बच्चों पर विश्वास करो। वो कहते हैं आप पापा बिल्कुल कुंवारे, 100% कुंवारे हैं, मम्मी ने बताया। अमित कुमार और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये फनी गीत।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: लीजिए साहब, चलने का समय हो गया है। यस
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: क्या कहें, शुरू से चक्कर रहा पांव में हमारे, कहीं रम गए महीनों, कहीं चार पल गुजारे, कहीं जहां किसी पे छिड़की, कहीं दिल किसी पे हारे, गमे आशिकी के सदके रहे उम्र भर कुंवारे। हम अकेले कैसे टिकते, कोई घर नहीं बसाकर, कोई घर कहीं बसाकर, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर, लौटाए धक्के खाकर, कभी जंगलों में भटके, कभी गुलिस्तान में आए, कभी कह कहों में डूबे, कहीं कभी गम के गीत गाए। लेकिन लीजिए, बाली ब्रह्मभट स्टूडियो में आए। शर्मा जी, आपने अभी तक अपने बस्ते क्यों नहीं उठाए? अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। Have a superb day. Bye-bye.

What a beauty, what a beauty. ये दोनों गाने मैंने जो आपको सुनाए, पिक्चराइज्ड ऑन नन अदर देन तनुजा. तनुजा, यस, डॉटर ऑफ कुमार सेन समर्थ एंड शोभना समर्थ. अब तनुजा का नाम जब जुड़ता है, जैसे कि उनकी बेटी काजोल के साथ, तो ऐसा लगता है कि इट्स अ बंगाली फैमिली. बट तनुजा ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम अ मराठी फैमिली एंड मैरिड टू अ मुखर्जी, दैट इज शोमू मुखर्जी, शशाधर क्या नाम है ना, शशाधर मुखर्जी, द ग्रेट प्रोड्यूसर फिल्म मेकर. उनके तीन बेटे जो शोमू, जॉय एंड देव मुखर्जी. तो शोमू मुखर्जी ने शादी की तनुजा जी के साथ, एंड दैट्स अ बंगाली फैमिली जॉइनिंग अ मराठी फैमिली. सो समर्थ एंड मुखर्जीज. अभी इनके हस्बैंड जो थे शोमू मुखर्जी, दे गॉट मैरिड इन 1973, लेकिन ही पास्ड अवे ऑन 10th ऑफ अप्रैल, दैट वाज 2008. द ग्रेट फिल्म मेकर डायरेक्टर शोमू मुखर्जी, ही डाइड एट द एज ऑफ 64. लेकिन दो प्यारी बच्चियां, काजोल एंड तनीशा, एंड काजोल इज मैरिड टू अजय देवगन. अभी इनकी माताजी जो थी शोभना, शोभना समर्थ, शी प्रोड्यूस्ड डेब्यू फिल्म्स फॉर बोथ द डॉटर्स. नूतन और तनुजा को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, इन्होंने 1950 में एक फिल्म प्रोड्यूस की विच वॉज हमारी बेटी, जिनके डायरेक्टर थे केदार शर्मा. वाह, केदार शर्मा कितना बड़ा नाम है. ही डिस्कवर्ड राज कपूर, ही डिस्कवर्ड मधुबाला, ही डिस्कवर्ड गीता बाली, और इन्होंने डायरेक्ट किया नूतन और तनुजा को. फिल्म थी हमारी बेटी 1950. तब तनुजा वॉज बेबी तनुजा, 7 years old. उसके बाद शी डेब्यूटेड एज एन एडल्ट इन द फिल्म छबीली, 1960 की फिल्म, एंड शी वॉज 17 years old एट दैट टाइम. एंड देन उसके बाद तो फिल्मों के बाद फिल्में, फिल्मों के बाद फिल्में. यस, ज्यूअल थीफ, आहा हा क्या फिल्म थी. उसके अंदर बेस्ट सपोर्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन मिली थी फिल्म फेयर अवार्ड्स में. फिर हमारी याद आएगी, वो तो इनकी

0: बेबी तनुजा की डेब्यू जो थी 1968 में इज्जत फिल्म विद धर्मेंद्र, जीने की राह में जितेंद्र एंड पैसा या प्यार उसमें अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। फिर तो ऐसी ऐसी फिल्में आई, मतलब मैं नाम बोलता जाऊं और आप तालियां बजाते जाइएगा। यस दैट्स राइट, तालियां बजेगी। हाथी मेरे साथी, दैट्स राइट, मेरे जीवन साथी। ऐसे तो जितनी बार बोलूंगा उतनी बार तालियां बजेगी। 2014 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला एंड शी इज 83 इयर्स यंग। उनकी बहने, इट वॉज नॉट ओनली नूतन द सिस्टर बट दे हैड दे वर थ्री सिस्टर्स, नूतन, चतुरा, रेशमा, तीन बहने एंड एक ब्रदर जयदीप। उसमें से नूतन के सिवाय कोई भी एक्टिंग में नहीं गया। चतुरा भी केम एन आर्टिस्ट एंड रेशमा एंड ब्रदर जयदीप, दे डिडंट टेक एनी इंटरेस्ट इन द फिल्म्स। सो वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन Tanuja. Let's listen to all the songs of her films.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmbhat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Creative's team events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties.
9: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
11: हमारी रक्षक है वो।
12: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
13: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
12: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
14: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
16: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper 2 Road, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208767-7627।
17: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
0: To Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a Gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Because your eyes don't always see what's changing, our Ultima Eye Test helps us see more. With OptiMap technology, we can provide a more comprehensive view of your overall eye health to give the best personalized support to you. Boots Opticians. See what's possible. OptiMap captures a wider view of your eye health in a single image compared to a traditional eye scan. Additional charges from £50 may apply.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
8: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
7: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
8: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
7: ICICI Bank UK. Transfer now. Celebrate together.
9: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. DLC supply.
10: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344. 24-hour line.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
13: दोस्ती, मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी.
14: सामने एक काम कर, मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए. नाकता चाहिए એટલે
13: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता, फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी. प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख. डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक.
15: तू गांडो छे, आगे मारो ब्रेक मारे तो पाछळ वाळो ब्रेक मारे ने यार.
13: स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी. रिलीजिंग फ्राइडे 25 सितंबर. यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.
16: मायाभाई नी मौजवाणमा थई जाओ रेडी. मां कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो. मायाभाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज.
7: वेन्यू, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 3, 10 स्टोन फील्ड वे, साउथ राइसलीप, HA40JS.
16: टिकट्स 30, 40 अने 50 पाउंड. लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड.
7: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509.
17: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
18: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
17: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
18: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
17: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
19: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
20: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
19: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
21: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
22: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: और चकोरी चकोरी खाली अलग।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाए।
3: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
4: Non-stop classics. Classics. Laika Gold.
5: इतना खूबसूरत गीत है मुकेश जी और लता मंगेशकर।

मेरे जीवन साथी 1972 की सुपर डुपर हिट फिल्म विद तनुजा इन इट। लेकिन अगला गाना सुनिए फिल्म मेरे जीवन साथी के बाद ज्वेल थीफ का।

0: Previous song was R.D. Burman और ये गाना S.D. Burman. ये गाने को लिखा शैलेंद्र जी ने और मेरे जीवन साथी के सब गाने थे मजरू सुल्तानपुरी के. आगे जो गाना है that's for दिनेश पोपट जी.
1: Forgotten memories refreshed like a gold.
0: सलील चौधरी का संगीत और शैलेंद्र की लिरिक्स सुनिएगा.

नेक्स्ट ट्रिब्यूट इज गोना बी एन अमेजिंग वन. एक राइटर जो ओवरनाइट मिलियनेयर बन गए, उनकी ट्रिब्यूट है.

वाओ, क्या गाने हैं ना। मैंने सब गाने जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए राजेंद्र कृष्ण ने लिखे गाने, वो सब मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाले। सो ABCD जब शुरू हुआ तो सी पे आया चित्रगुप्त, और फिर आया सी रामचंद्र। अब चित्रगुप्त का गाना जो था फिल्म बरखा का, मुकेश जी और लता मंगेशकर जी ने गाया एंड चित्रगुप्त का संगीत था। और उसके बाद गोरे गोरे ओ बाके छोरे, द फेमस सी रामचंद्र जी, एंड द सिंगर्स अमीर बाई कर्नाटकी एंड लता मंगेशकर। आगे जाते हुए देल बी म्यूजिक डायरेक्टर्स हेमंत कुमार, फिर हुस्न लाल भगत राम, ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। फिर कल्याण जी आनंद जी आएंगे, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आएंगे, मदन मोहन जी आएंगे, रवि म्यूजिक डायरेक्टर आएंगे, RD बर्मन, फिर

डायलॉग्स इन 41 फिल्म्स। फिल्म के डायलॉग लिखना इतना इजी नहीं होता, लेकिन ही वाज सो मल्टी टैलेंटेड एंड लिरिक्स लिखी 52 फिल्मों में आउट ऑफ द 74 फिल्म्स। एंड ही रोट द स्टोरी ऑफ वन फिल्म, कौन सी फिल्म थी वो मैं याद करने की ट्राई कर रहा हूँ, खेल मोहब्बत का, दैट्स राइट, 1986 की जो फिल्म थी उसकी कहानी इन्होंने लिखी थी। एंड स्क्रीन प्ले इन्होंने किया था मन मंदिर 1971 की फिल्म, पड़ोसन फिल्म द फेमस फिल्म 1968 की, उसका स्क्रीन प्ले इन्होंने किया था। लेकिन स्क्रीन प्ले क्या होता है? स्क्रीन राइटर जो होता है वो ऐसी स्क्रिप्ट बनाता है सो ही एनेबल्स द डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, किसको भी प्रेजेंट करेंगे, उसकी जो सेटिंग होती है, इमोशन होती है, एंड द वे इट विल वर्क ऑन द स्क्रीन, कैसे फॉर्मेट में जाएगा सब। अ स्क्रीन राइटर कोलैबोरेट्स विद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स टू ड्राफ्ट द रीड्राफ्ट देयर स्क्रिप्ट। ड्राफ्ट करते हैं फिर रीड्राफ्ट करते हैं उनकी स्क्रिप्ट, एंड ऑफ्टन वर्किंग टू टाइट डेडलाइंस। अभी किसी दिन मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, लेकिन आज हम बताते हैं आपको कि 1966 में इनको अवार्ड मिला था तुम ही मेरे मंदिर गाना जो था खानदान फिल्म का। ही वॉज बॉर्न ऑन 6th of June 1919 एट जलालपुर जट्टा, दैट्स चनाब जो नदी है, रिवर उसके बाजू में, और दैट्स वॉज गुजरात डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब इन पाकिस्तान। इट्स 50 किलोमीटर्स फ्रॉम POK कश्मीर। तो 1966 में अवार्ड मिला। ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पोएट्री सिंस ही 8th क्लास में, फिर क्लार्क की जॉब ली इन शिमला म्यूनिसिपल ऑफिस में अंटिल 1942। उम्र क्या थी? सिर्फ 23 साल की, और क्लार्क की नौकरी ले ली। ही वॉज एक्टिव फ्रॉम 1948 टू 1990 फॉर 42 ईयर्स, और इस 42 साल में 74 फिल्म्स इन्होंने की। ही रेड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ऑथर्स, सब की पोएट्री वो पढ़ते थे, जैसे कि उर्दू पोएट्री ऑफ फिराक गोरखपुरी एंड एहसान दानिश, हिंदी पोएम्स जो थे पंत और निराला की वो भी स्टडी करते थे। मतलब ही वॉज एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन पोएट्री कॉन्टेस्ट इन न्यूज़पेपर सप्लीमेंट्स। अब मिड 1940s में येलो ही शिफ्टेड टू बॉम्बे, द नगरी जो सबकी जिंदगी बना देती है, टू बिकम अ स्क्रीन राइटर। स्क्रीन राइटर बनने के लिए वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए। हिज फर्स्ट स्क्रीन प्ले वॉज फिल्म जनता 1947 में। उम्र क्या थी? 28 साल का नौजवान। हिज फर्स्ट फिल्म एज अ लिरिसिस्ट वॉज जंजीर 1947 की फिल्म, and he got noticed for the script and lyrics in Motilal Suraiya Starrer, Aaj Ki Raat, 1948 ki jo film thi jisme Motilal the aur Suraiya bhi thi, Aaj Ki Raat, uski script aur lyrics likhi, then he tasted the real success. Jab Mahatma Gandhi ka assassination hua to raato raat inhone Husnlal Bhagatram ke sath baithkar ek gana taiyar kiya, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। जी हाँ, जो रफ़ी साहब ने इतनी बाखूबी से गाया वो गाना इन्होंने लिखा, हुसनलाल भगतराम ने रातों रात इसको कंपोज किया और रिकॉर्ड किया, एंड ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द कंट्री। देन ही रोट लिरिक्स फॉर बड़ी बहन 1949, लाहौर 1949। उम्र क्या थी? सिर्फ 30 साल की, एंड देन ही नेवर लुक बैक। फिर तो सब म्यूजिक डायरेक्टर्स आए इनके पास और सब ने इनसे लिखवाया। सो एक बार वो गए थे महालक्ष्मी रेस कोर्स में, और रेस कोर्स में हॉर्स रेसिंग में इन्होंने बैटिंग किया, एंड ही गॉट अ जैकपॉट वर्थ 4,600,000 रुपीज, दैट्स 46 लाख। उस जमाने में ही बिकेम एन ओवरनाइट मिलियनेयर, अ ह्यूज सम दैट वाज इन द लेट 70s, 1973 में आई थिंक ही वाज इन दैट। नाउ ही सैडली पास्ड अवे ऑन 23rd सितंबर 1987 एट द एज ऑफ 68। HMV ब्रॉट आउट एन LP कंटेनिंग 12 ऑफ हिज सॉन्ग्स। अब उनके गाने सुनेंगे।

0: हुसनलाल भगतराम बड़ी बहन 1949। आज भी देखो 1949 के बाद 2026 में ये गाने सुनाई दे रहे हैं। एंड वी गिव ट्रिब्यूट टू 39th डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र कृष्ण ऑन लाइक अ गोल्ड।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Like a
0: gold. Catch the brand new game show India ke top 1%, hosted by Anil Kapoor. Every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar. Download and subscribe to the Jio Hotstar app now. Jio Hotstar is also available on Sky TV as an app.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
3: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: Podcast episode number 34. The title is Modern Harassment, hosted by Deep Raja. Deep Raja speaks to Sangeeta Pandey of IIW and Gayatri Shenoy, principal business analyst, about modern harassment. Leica Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
3: Leica Extra is here.
4: Leica Gold.
5: Don't move that. And oh. New ways to invest.
6: Okay.
5: Foolproof guaranteed returns. Invest today.
6: All right, I think I will.
7: Way before you seal the deal, check if it's real and if a company's authorized by the FCA.
5: Oh, thanks.
7: Search FCA Firm Checker.
8: Good afternoon. Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
9: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
10: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
9: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: विजिट TravelHubWorld.com।
11: हैरो, इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो। स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खाने, मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
12: दोस्ती, मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी।
13: सामने काम कर, मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए।
14: नाकता चाहिए એટલે
12: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी। प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख। डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक।
15: तू का अंडो छे, आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार। तारी मारी
12: दोस्ती। स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी। रिलीजिंग फ्राइडे 25 सितंबर। यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।
14: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
16: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
17: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
18: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
19: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
20: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
21: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
22: Your brain now, play the game now.
23: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
24: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja talks about modern harassment.
25: A lot of the time, women, they can be unnecessarily harassed, hassled, not in a very nice way.
26: Subtle way.
25: You know it's happening. They know it's happening. When are we going to actually speak up and say,
26: now,
25: hang on, uncle, that wasn't right, mummy, do something.
26: Now is the time to do it,
25: right,
26: actually.
25: How?
24: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.
0: We come to Kalyanji Anandji, alphabetical order, Rajendra Krishan songs.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड
1: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
2: sonajewels.co.uk स्पेशल ऑफर 14 डेज टू जापान एंड साउथ कोरिया फॉर चेरी ब्लॉसम्स इन March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call Sona Jewels now on 0208-951-0111.
3: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
4: I left behind everything I knew.
3: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
4: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
3: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
5: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
7: We're finally going home for the wedding.
8: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
10: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
12: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 07344520666.
13: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
14: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: There you go, alphabetically, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बाद मदन मोहन. लेकिन मदन मोहन जी के बाद थोड़ा सा जंप मारना पड़ेगा, क्योंकि गाने लंबे हैं तो थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज होगा. लेकिन नेक्स्ट आवर में कंटिन्यू होगा राइट टू दी उषा जी तक.
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
0: Madan Mohan. Rajinder Krishan ji ne ye gana likha tha. Kishore Kumar aur Lata Mangeshkar. Film hai Bhai Bhai. Such a versatile writer.

अब है बारी, वो थे मदन मोहन, ये है शंकर जयकिशन की बारी। राजेंद्र कृष्ण जी ने गाना लिखा था फिल्म कॉलेज गर्ल का, हम और तुम और ये समा लवली।

ऐसे गाने जब सुनाई देते हैं तो ऐसा लगे कि बहुत छोटा गाना था. यू नो ऑल द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग. अब जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ नन अदर देन द ग्रेट लिरिसिस्ट, द ग्रेट डायलॉग राइटर, द स्क्रीन प्ले राइटर, एंड जिन्होंने एक फिल्म की स्टोरी भी लिखी थी, वो थी आज की रात 1948 की एक फिल्म थी जिसमें स्क्रिप्ट भी लिखी थी. और स्टोरी ऑफ फिल्म जो थी वो थी खेल मोहब्बत का 1986. अब इतने सारे गाने हैं इनके, ही इज गॉट 55 क्लासी सॉन्ग्स. अब 55 गाने मैं कहाँ से लाऊं आपके लिए इतने कम अरसे में. सो अगर मैं आपको बताऊं कौन से गाने मैंने सोच के रखे थे लेकिन फिट नहीं हो रहे यहाँ पे, जैसे कि वो एक गाना नहीं है

0: अरे ये गाना तो मैं आपको सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा अगर मौका मिला तो। कौन सा है? यस यस यस, ये हवा ये रात ये चांदनी है ना, आपका फेवरेट होगा वो। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर बातें कम करूँगा और गाना डाल दूँगा। व्हाट डू यू से? फिर ए दिल मुझे बता दे टरा टरा टरा, ये भी ना। हाँ माई गॉड, ये रास्ते हैं प्यार के, और इना मीना रेगा डायडा मनीगा। फिर इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, वो भी ना, फिल्म छाया का। ऐसे ऐसे गाने सब मैंने ढूंढ के रखे थे। फिर क्या करें, जब वक्त कम होता है तो मैं जितने भी सुना सकता हूँ उतने सुनाए मैंने। अब वो म्यूज़िक डायरेक्टर रवि और फिर उसके बाद आर डी बर्मन, अभी आपने सुना। नेक्स्ट हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक विल बी कविता कृष्णमूर्ति। और केसी बोकाड़िया जी ने अभी अभी संस्कार एक टेलीविज़न सीरियल मंडे से शुरू किया है, और उन्होंने ये फिल्म बनाई थी प्यार झुकता नहीं, और कविता कृष्णमूर्ति जो कि जी को गवाया था इन्होंने, वो गाना मैंने आज चुना है आपके लिए। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ये जर्नी ऑफ राजेंद्र कृष्ण, बिकॉज एस डी बर्मन का गाना होगा फिल्म बहार। एंड देन उसके बाद आएगा उषा खन्ना, उषा खन्ना की बारी आएगी, तो आप सुनते रहिएगा कौन सा गाना, कौन से गाने राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे थे। सुनते रहिएगा, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइका गोल्ड रेडियो विद गोल्ड आफ्टरनून्स। एंड ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट रेट्रो म्यूजिक स्टेशन ऑफ यूके, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग ऑल द वे टू 442nd day of Laika Radio Midlands. Yes, and Raj Bandhan ji us radio station pe aayenge from 4 to 7. Laika Radio Midlands, which was set up on 1st July 2025. Aaj 266th day of 2026, countdown shuru ho gaya hai, right up to the end of this year. 99 days left. 99, 98, 97, हर रोज हम काउंट डाउन करेंगे, ठीक है। 11th डे ऑफ लाइका गोल्ड ईयर 6 एंड 882nd डे ऑफ लाइका ग्रेटर मैनचेस्टर। सुनते रहिएगा, लुत्फ उठाते रहिएगा। एंड नेक्स्ट आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक कविता कृष्णमूर्ति।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties. 11, 11. search is changing.
8: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
8: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
8: So when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
8: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
8: Have you? Visit HartyHanks.com.

0: .com and make sure AI recommends you.
1: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: हेलो, द वेट इज ओवर। प्रख्यात स्पाइस विलेज हवे हैरो मा खुली गयु छे। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, स्वादिष्ट कराहियो अने तंदूर माथी निकलेला गरमा गरम फ्रेश नान, साथे सौथी मोटा वेजिटेरियन मेन्यूज माथी एक अलग वेजिटेरियन किचन मा तैयार। तो फैमिली अने फ्रेंड्स ने साथे लावो अने माणो स्पाइस विलेज नो अवॉर्ड विनिंग स्वाद। आवो 124 डोमिनियन परेड, स्टेशन रोड, हैरो। स्पाइस विलेज हैरो, नाउ ओपन। खावा, मळवा अने सेलिब्रेट करवानु तमारु नवु सरनामू।
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02087677627।
9: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
9: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।

0: I know. So, alphabetically देखा जाए तो S पे जब आए हम तो सज्जाद हुसैन जिन्होंने ये गाना कंपोज किया और राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा. क्या वैरायटी है ना आज. I'm glad you're enjoying it. I'm receiving your messages. Thank you.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: London's biggest classics all day. Like a gold.
0: सज्जाद हुसैन के बाद आती है बारी सलील चौधरी की. सलील चौधरी जी के लिए फिल्म छाया जिसमें सुनील दत्ती थे, 1961 की फिल्म. गाना लिखा राजेंद्र कृष्ण जी ने.

What a versatile writer. Future में आपने नाम रा याद रखना है राजेंद्र कृष्ण. और next उषा खन्ना. Yes, राजेंद्र कृष्ण wrote for उषा खन्ना. And I end with the great voice of रफी साहब. उषा खन्ना एंड राजेंद्र कृष्ण कॉम्बिनेशन. फिल्म है आओ प्यार करें, 1964 की फिल्म. क्या गाना है, दिल के आईने में तस्वीर तेरी. एंड आई वुड स्पेशली डेडिकेटेड टू नौशीन एंड इमरान खान. इस काजल नेक्स्ट हियर. And we have on Laika Radio Midlands, Rajpatan Bali Brambadka. Namaskar.

0: ये है लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। Start

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
2: सांभळ एक काम कर मेडिकल देले अने नाखता जाइए
3: એટલે
1: सोल सूत्र प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
4: तू गांडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे छे यार
1: तारी मारी दोस्ती स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी रिलीजिंग फ्राइडे 25 सितंबर यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया
5: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: Cow's Choice, 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 07344-520-666.
8: Cow's Choice, pure ghee. Shudh desi swai.
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
11: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
14: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
15: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
16: मैं हूँ अनीसा नासिर लाइका गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है बिग शो सुनना भूलिएगा मत

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11, 11.
3: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
5: Danu 11, 11. Danu Properties.
6: Danu 11, 11. जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती. इसे हमेशा याद रखना.
7: काश कोई आ जाए, उन्हें समझाए.
8: Catch the brand new show, Sayoni, starts Wednesday the 23rd of September at 6 PM on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
9: हमारी रक्षक है वो.
10: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
11: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है?
10: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन. द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
12: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट. ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
12: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
14: sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
15: Like a Goon. Officially London's number one Asian Retro Music Station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGoon.com.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
2: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra. Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24-hour line.
0: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: In for Sandy Shah on the Drive Time Show on UK's number one Asian retro music station, Leica Gold. On 10:35, medium wave, a DAB radio online and Leica Radio mobile app. And on the sister radio station, which is Leica Radio London and Midlands Birmingham, we have Raj Budden. And then in Leica Radio Greater Manchester, we have Jay sitting in for Riz Khan. What a great start, in fact, for the two for the final hour from the film Judai, Raat Ko Neend Aati Nahi. It's Amit Kumar and Priya Mayekar, Priya Bhattacharya, sorry. Many people say it's Kavita Krishnamurthy. It's not. It's Priya Bhattacharya. And from the film Maine Pyar Kiya, you heard Lata Ji and S.P. Balasubramanian from my favourite album. Aaja Shaam Hone Aayi. What a lovely song as well. And perfect timing, right? Tu Chal Mein Aayi. I just got that message right now as well. Aaja Shaam Hone Aayi. Look how I drive time show pe hoon. Tu Chal Mein Aayi. आपको पता है कि हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है कविता कृष्णामूर्ति और इट्स बीन सो डिफिकल्ट टू इवन सजेस्ट एनी टू सॉन्ग्स फॉर यू टू चूज फ्रॉम फॉर आवर ये या वो. इट्स बीन सो डिफिकल्ट, लाइक द वंस आई हैव इवन पिक्ड आउट, आई फील आई वुड वांट टू लिसन टू बोथ ऑफ देम, बट वी कैन ओनली हैव वन. इसलिए ये फीचर हम लेके आ रहे हैं,
1: ये या वो.
0: एग्जैक्टली. तो ये या वो हम खेलते हैं. तो कविता कृष्णामूर्ति के दो दो गाने हम सुनाने जा रहे हैं आपके लिए. आपको यही डिसाइड करना है, विच सॉन्ग डू यू वांट टू लिसन टू बिफोर 7 o'clock फॉर आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक. तो चलिए यही गाना हम सुनाते हैं आपके लिए, जस्ट जस्ट यू नो जस्ट इन केस यू वांट टू लिसन टू इट.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
2: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
2: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
2: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
2: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place.
4: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11.
4: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
7: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
8: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
9: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
10: Cow's Choice Pure Ghee. Shudh Desi Swai.
11: हैरो इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान. साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो. स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन. खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
12: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
14: Hello, wake up with me, Kajal, on the breakfast show where I take you down memory lane, get inspired by morning mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Laika Gold and Laika Radio Midlands.

0: To book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
2: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
1: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
2: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
1: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगो मा जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-228-7509
5: Up next, Anisa Nasir with The Big Show on Leica Gold. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मुझको मिली थी हिजर की सूरत में खामोशी, मुझको मिली थी हिजर की सूरत में खामोशी, मैंने तमाम बोलते पंछी उड़ा दिए, परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, तो मतलब किसी से आँखें मिलने लगे तो पहले पता कर लीजिएगा बायोडाटा उनका, परदेसी तो नहीं है, यहाँ पर असाइलम पर तो नहीं है, कब से सेटल्ड हैं, मतलब मोहब्बत ये सब कुछ पूछ के थोड़ा ही ना होती है, लेकिन हाँ परदेसियों से ना क्या मिलाना। गीत है भाई, गीत है, अब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत भी क्या है। अनीसा बेगम, आप वो नाम मेंशन करो जो बेताब है अपना नाम सुनने के लिए, जैसा कि जनाब ताहिर साहब, और बेताब होना भी चाहिए, राजा ऑफ द आवर है। सबसे पहले आपने सही जवाब दिया, फिर रुखसाना अफजल जी ने, उल्लास जी ने टोरंटो से, अमित जी ने, मिसिस चियांग वेल डन, हिमा जी, राज जी, शकीला नेहरा जी, पंडित सुधीर शर्मा जी, मिसेस के, कमर अहमद जी, विजय गुडोरी जी, मंजीत संगर जी, दिलीप सरोज जी, मोहब्बत करने वालों, हम मोहब्बत इसको कहते हैं, देख लो दीदी हम तो छुट्टी पर हैं, हॉलीडेज पर हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम टाइम निकाल कर सुन रहे हैं, इसीलिए तो बहुत कद्र करती हूँ मैं आप सभी की। थैंक यू सो वेरी मच, आपको बेटे की ग्रेजुएशन मुबारक हो, आपको आपकी वेडिंग एनिवर्सरी मुबारक हो, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए आप घूम फिर रहे हैं लेकिन फिर भी साथ निभा रहे हैं, सो वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। जवाब आपका भी सही है। गीता हर्षित जोशी जी, आपका भी जवाब सही है। अमित पटेल जी, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। मीनाक्षी जी, मान लेती हूँ, बस जब पता चल जाए ना तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन मत किया करें, फिर आप इधर उधर हो जाते हो, लिहाजा बस दो तीन चीज़ें कह दी, मतलब क्लियर कर दिया कि भाई ये कॉमन है, एक वर्ड कॉमन नहीं है, जैसा कि मनु जी ने किया, मनु जी ने कहा नैना कॉमन है, नैना कॉमन नहीं है, ये वर्ड कॉमन नहीं है। रचना जी, आपका भी जवाब गलत। चौधरी फरीद जी कहते याद रखना कॉमन है, तो फिर याद रखिए कॉमन, तो इतनी जल्दी नहीं करनी है आपने। और उमर जी दुबई से, ना एक ये वाला वर्ड कॉमन नहीं है।
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड, बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइक अ गोल्ड पर सुनिए, मंडे टू फ्राइडे 10 टू

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: लाइका गोल्ड ऑफिशियली लंदन्स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: मुश्किल।
1: और भाई हमारी तो मुश्किल आसान करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो सही जवाब आते भिजवा रहे हैं। वजाहत जी बेहद शुक्रिया, जवाब तो नहीं आपने भिजवाया लेकिन हमेशा की तरह बहुत प्यारा मैसेज ज़रूर पहुंचाया है, बेहद शुक्रिया। विजय गुनुआ जी थैंक यू सो वेरी मच, आपका जवाब बिल्कुल सही है। गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, मकबूल जी, अजिंकिया जी, भरत गंगाराम जी, तारिक राहील जी, दर्शना जी, रीटा जी, नौशीन खान जी, शगुफ्ता जी, अमिता जी और नीलेश जी, अभी और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। तोची जी आपका मैसेज अभी अभी मुझ तक पहुंचा है, वेल डन। और जनाब चौधरी फरीद अहमद साहब जवाब तो सही नहीं भिजवा पाए लेकिन शायरी बड़ी ठीक ठाक भिजवाई है। कहते हैं मेरी आंखों में नम ज़्यादा है, मेरी आंखों में नम ज्यादा है, यानी मुझ पर करम ज्यादा है। तुझको पूरा बयां न कर बैठूं, आज जोरे कलम ज्यादा है। आए वो छीन ले मुझे तुझसे, आए वो छीन ले तुझे मुझसे, जिसके सीने में दम ज्यादा है। सारी खुशियां मिला के देखी हैं, सारी खुशियां मिला के देखी हैं, तेरे जाने का गम, तेरे जाने का गम ज्यादा है।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: One British pound aaj aapke dila sakte 126.8 Indian rupees, 84.9 Afghan Afghani, 366.9 Pakistani rupees, 162.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LAIKA Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is currently trading at £104.12 per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Biggest
3: Indian and Pakistani classics with Anisa Nasir.

0: वो आंखों आंखों में करते हैं इस तरह बातें, वो आंखों आंखों में करते हैं इस तरह बातें कि कानों कान किसी को खबर नहीं होती। लेकिन डीजे जी, आपको कैसे खबर नहीं हुई? पता नहीं कहाँ से आपने मैसेज भिजवाया है, मतलब यूके से नहीं है। आपने कहा कि मैंने ट्यून इन किया सुनने के लिए लाइक अ गोल्ड, और इस वक्त तो सरिता जी शो करती हैं। सरिता जी वीकेंड पर करती हैं जी, हाँ वो आती हैं सैटरडे और संडे। मंडे टू फ्राइडे मेरी जिम्मेदारी होती है इस वक्त लीजिए। और मेरी जिम्मेदारी में शामिल है वीना जी, मुमताज जी, दिनेश पोपट जी, रानी जी, अरुणा शाह जी, मीरा जी, किरण जी, आपके नाम मेंशन करना क्योंकि आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। दो और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के गीत आपके कानों तक पहुंचने के मुंतज़िर हैं, लिहाजा रेडियो के करीब ही रहिएगा। और उन सभी का बेहद शुक्रिया जिनका सही भी है और जिनका नहीं भी सही है, जैसे कि अंजुम जी, अभी अभी आपने गलत जवाब भिजवाया। चलिए उस लाइन में आ जाइए जहां उमर जी हैं, चौधरी फरीद अहमद जी हैं, रचना जी हैं और मनु जी।
1: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो। This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
3: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
2: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
3: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
2: ICICI Bank UK, transfer now. Celebrate together.
4: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. DLC is a
5: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
6: Lights on, shutters up, staff ready.
5: But today's customers don't start on the high street.
6: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
5: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
6: They walk into your competitors.
5: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
6: Hearty Hanks. The digital agency that doesn't play safe.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
7: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र।
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर। टू बुक कॉल 0208-514-5400, online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
12: માયાભાઈની મોજમાણમાં થઈ જાઓ રેડી. માં કૃપા ફાઉન્ડેશન યુકે પ્રેઝેન્ટ્સ ભવ્ય ડાયરો, માયાભાઈ આહિર, જયશ્રી ભોજવિયા અને નિર્મળસિંહ ઝાલા સાથે
2: 27 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ. વેન્યુ: ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 3, 10 સ્ટોન ફિલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલીપ, HA40JS. ટિકિટ્સ 30 અને 20 પાઉન્ડ. લાઇટ રિફ્રેશમેન્ટ ઇન્કલુડેડ. બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0777-287-509. Cow's Choice. 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
13: Cow's Choice pure ghee, har chamach mein shudh desi swad.
0: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
14: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
15: Here's how it works: when you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
14: No fee, no gimmicks, real money back, a better rate and cash back from a broker that costs you nothing.
15: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
14: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
1: Anisa Nasir with The Big Show, weeknights from 7 p.m.

0: reminisce those classics on Like a Gold.
1: So basically, गीतों में आँखों का जिक्र रहा. Good evening.

दिल जो ना कह सका वही राज़े दिल कहने की रात आई। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के आगाज़ के दोनों गीत आपको बहुत पसंद आए होंगे, और कैसे नहीं आएंगे, आप ही की पसंद को जहन में रख कर जो है हम गीतों को चुनते हैं। मेरा साथ निभा रहे हैं तो बेहद शुक्रिया, और अगर नहीं निभा रहे हैं तो बड़ी बुरी बात है भाई, क्या कर रहे हैं आखिर, ऐसी क्या मसरूफियत है। कभी चांद बन किसी रात में, कभी आ नजर किसी बात में, कभी साथ साथ यूं हम चलें, तेरा हाथ हो मेरे हाथ में, मैं किसी की बात भी जब करूं, तेरी बात हो मेरी बात में, उसे ढूंढती हूं मैं रात दिन, वो जो गुम हुआ मेरी जात में। और भी देखो, अगर नहीं सुन रही हो तो मैं आपको बता दूं कि कराची में

0: One British sterling can get you 126.9 Indian rupees today. तो भूलिएगा नहीं एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और लीजिए ये चंद अल्फाज जरा ध्यान से सुन लीजिएगा. बार बार मैं दोहराती कम हूँ लिहाजा आपको पता है कि इस टाइम पर जो है ये अल्फाज बताए जाते हैं तो आई एम श्योर कि आप तवज्जो देंगे. हम ना रुकें, ऐसे झुकें कदम नाज पे. हम ना रुकें, ऐसे झुकें कदम नाज पे. कौन सा गीत है?
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Is your cat drinking enough? Discover Purina One Hydralife and help support their daily hydration with a taste they'll enjoy. Purina One Hydralife. Make it easy.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
4: Daddy!
3: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
5: Harrow, the wait is over. Prakhyat Spice Village have Harrow ma khuli gayu che. Sizzling mixed grills, signature masala fish, swadisht karahiyo, ane tandoor ma thi nikrela garma garam fresh naan. Saathe sauthi mota vegetarian menus ma thi ek alag vegetarian kitchen ma tayyar. To family ane friends ne saathe lavo ane maano Spice Village no award winning swad. Avo 124 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village Harrow, now ओपन. खावा मड़वा अने सेलिब्रेट करवानु तमारू नवु सरनामु.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साफो ट्रेवल. Atoll protected.
7: Hamari rakshak hai wo.
8: Balaji Telefilms presents The One, Force of the Forest.
9: Mujhe ye jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai un sab ka matlab kya hai? Kaun kar raha hai ye?
8: Mystery, fantasy, action. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in cinemas Friday 25th September. For UK release details follow Bakrania Media on Instagram.
10: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
11: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर्स विद अमेजिंग डिस्काउंट. 16 डेज चाइना फॉर 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट. कॉल सोना Tours on 0208-951-0111.
1: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Tum samne baithe raho, palke meri jam jaye. Matlab na main koi kaam karu na aap kare. Teri khushbu se mehakta hai mera shehr-e-khayal. Dil ke kaanon se suniyega. तेरी खुशबू से महकता है मेरा शहर ख्याल, मेरी हर सोच की दुनिया का हसीन लहजा है तू, तेरे जिक्र से समरती है मेरी शाम व सहर, मेरे लफ्जों में जो रहता है वो जज्बा है तू, तेरी आवाज में घुलती है मोहब्बत की महक, तेरी आवाज में घुलती है मोहब्बत की महक, मेरे खामोश से एहसास का चर्चा है तू, मैंने चाहा है तुझे ख्वाब की ताबीर की तरह, मेरी आंखों में जो ठहरा हुआ चेहरा है तू। क्या बात है फिल्म इकरार के इस गीत की, और सबको बहुत अच्छा लगा और मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। जड इलाही जी कहते हैं अनीसा जी हम बिल्कुल एंड तक आपका साथ देंगे। क्या बात है, मोहब्बत करने वालों हम मोहब्बत इसको कहते हैं। और शकीला नेडा जी कहती हैं कि अनीसा जी मैं कितनी बिजी ही क्यों ना हूँ, मैं प्रोग्राम सुनती हूँ, आपका साथ निभाती हूँ। आप सब बहुत प्यारे हो भाई, सभी बहुत प्यारे हो। और जल गई जल गई जल गई दुनिया जल गई, कहना तो नहीं चाहिए ऐसे गुल जी मुझे। कहती लो जी अब बकरे बकरियां सुननी तो हमारी बिल्ली कौन सी नहीं सुनती, वो भी बराबर हमारे साथ बैठ के सुनती है आपको, और म्याऊं म्याऊं करती रहती है। म्याऊं का मतलब ही बताइएगा कि वो कहती क्या है आखिर, मैं भी तो सुनूं।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: जी हाँ, Southall Travel के बारे में आप जानते ही हैं, known for its competitive holiday deals in Dubai. और contact कीजिएगा Southall Travel को 1020-8574-8410 पर। Southall Travel याद रहे is it all protected.
0: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: अच्छा, मैं अब एक जो है वो जोक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने सुना कुछ लोगों ने नहीं सुना और चाह रहे हैं कि मैं रिपीट कर दूँ। एक हमारी लिसनर है वो कहती है मेरे मियाँ जी ने सुना लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे सुनाया मुझे समझ में नहीं आया, तो आप उसे ज़रा दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगी? ऑफ कोर्स आई विल। लेकिन जोक से पहले मेरा ख्याल है कि मैं आप तक एक और जो है ज़रूरी मैसेज वो पहुंचा दूं, या चलिए ठीक है मैं पहले आपको जोक ही सुना देती हूं। एक खातून जो थी, एक बीवी जो थी, वो बहुत बीमार थी, तो अपने हस्बैंड से कहने लगी सुनो मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। तो शौहर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा नहीं बेगम, मैं पहले थोड़े दिन आराम करूंगा।
0: This is Anisa Nasir on Like a Gold, Greater London.
2: चले जिसको समझ आई वो हंसे, वो रेडियो वाली तो हंस हंस के दोरी तेरी हो रही है, और वो उसको हमेशा इसी तरह ऊपर वाला हंसता रखे, जब तक हंसती रहती ना मेरी जान छूटी रहती है, जरा सा यूं मुंह बनाती है फिर दौड़ी मेरे स्टूडियो में आ जाती है, और फिर मुझे भी जो है वो ये देखो आ बैल मुझे मार। मैंने क्यों कहा मी एंड माई बिग माउथ। हाँ जी क्या काम है आपको मुझसे, मुझे ये बताइए।
3: मुझे सिर्फ इतना कहना है आई लव यू।
2: लव यू टू, थैंक यू सो मच। वो क्या
3: वो बेगम शोहर वाला प्यार नहीं, सच्ची मुच्ची वाला प्यार।
2: सो स्वीट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लीजिए भाई, और हम भी आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार पर। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप अभी। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
0: ये है लाइका गोल्ड। हे देयर, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।

0: अब मेरी आंखों में वो पहली सी हैरानी नहीं। क्या तुझे इस बात की कोई भी परेशानी नहीं?
1: मेरी हिचकी बंद गई है, पास से उठकर ना जा।
0: मुझको बस तेरा दिलासा चाहिए, पानी नहीं। Like extra
2: podcast update. और आपको बता दें, नई एपिसोड के बारे में दीप राजा जी ने होस्ट किया इसे, और बात करेंगे संगीता पांडे जी के साथ हरेसमेंट के मौजू पर। दे एक्सप्लोर मॉडर्न हरेसमेंट एट वर्क, फैमिली एंड व्हेन वन शुड स्पीक अप। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो।
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Cow's choice. 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 0734-520-666. Cow's choice pure ghee.
6: Shuddh desi swai. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
7: Visit mantraholidays.co.uk or call 0203773633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
10: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208 767 2142.
11: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
12: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel Good Classics with Anisa Nasir.

0: पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, इब्तिदा इश्क है होता है क्या आगे, नहीं रोता है क्या आगे, आगे देखिए होता है क्या। वो यूं दे रहा है सदाए मोहब्बत, वो यूं दे रहा है सदाए मोहब्बत, कोई आज मुझसे निभाए मोहब्बत, कोई भी नहीं है जो तुमसे बचा हो, सभी कह रहे हैं कि हाय मोहब्बत। वो दर्द मोहब्बत बहुत पुरसुकून था, सो दिल कहता है फिर सताए मोहब्बत।
1: लाइका गोल्ड currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 367.4 Pakistani rupees, 126.8 Indian rupees, 84.7 Afghan Afghani, 162.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download Lemfi now. T's and C's apply.
2: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.12 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और भी हमारे उल्टे पुल्टे को बूझ कर सबसे पहले एजाज जी ने राजा बनने का शर्फ हासिल किया। कंग्रेचुलेशंस अजिंक्या जी, आपका भी जवाब सही है। गीता हर्ष जोशी जी, आपका भी। रीटा जी, आपका भी जवाब सही है। और संध्या जी और उल्लास जी, आपके जवाब सही नहीं है।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड नॉन स्टॉप क्लासिक्स
3: पंजाबी तड़का विद अनीसा।

0: stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.
1: और ये था प्यारा सा गीत हमारा आज का उल्टा पुल्टा, जिसे बहुत सारे लिसनर्स ने सीधा किया और कुछ लोग नहीं कर पाए। बट इट्स ओके, कल फिर ट्राई कर कीजिएगा। और भाई अब तो बहुत सारे लोग अपनी बिल्लियाँ शिल्लियाँ सभी लेकर आ गए। शगुफ्ता जी भी कह रही है हमारे घर में तो दो दो बिल्लियाँ, दोनों माँ बेटी। अच्छा, अब रिश्तेदारी भी बताएंगी हमें? ज़रूर बताएंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप छोटी छोटी बातें शेयर करते हो तो। और संध्या भावसे जी का कहना है कि जब आप वर्ड्स बताती हैं तो मैं तो घर में किसी को आवाज़ नहीं निकालने देती कि कहीं मिस ना हो जाए। ज़्यादातर तो वैसे आप बूझ ही लेती हैं। वैसे बाय द वे कौन कह रहा है कि आज फरमाइशी डे नहीं है? आप भी मेरी तरह कन्फ्यूज्ड हैं क्या? अगले आवर की तरफ चलें, क्या ख्याल है? लेट्स गो।

जाते हुए जिद और अना त्याग के जाऊं, जाते हुए जिद और अना त्याग के जाऊं, दे मुझको वो आवाज तो मैं भाग के जाऊं। और ऐसा ही जज्बा हो, ऐसी ही दीवानियत हो, ये मैंने नया नया वर्ड सीखा है दीवानियत, ये गाने में मैंने सुना और मैंने कहा रे कैसे कैसे वर्ड्स बनने लग गए भाई, लोग अपने घर पे डिक्शनरी बना रहे हैं मेरी तरह। तो भाई दीवानगी की इंतहा पर ही ऐसा कुछ किया जा सकता है। एनीवेज अगर ये गीत अच्छा लगा तो मुझे नहीं बल्कि निम्मी जी को थैंक्स करें, और अगर प्रोग्राम के फाइनल आवर का पहला गीत अच्छा लगा तो उसके लिए एहसान जी का एहसान हमको मानना होगा। मनु माधवानी जी कहते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं फरमाइश करने की। अनिल जी कहते हैं बरसों पीछे ले गया वो गीत हमें। ऐसे ही मैं हमेशा कहती हूँ ना, किसी की कोई ना कोई याद जुड़ी होती है हर किसी गीत के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब होती है।

0: buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: Sit back, relax and enjoy your farmaishi or... कविता कृष्णमूर्ति जी हमारी इस हफ्ते की जो हैं वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं. तो पहले उनकी आवाज़ में गीत सुनेंगे और उसके बाद फिर आपके फरमाइशों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा. गुड इवनिंग.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Is your cat drinking enough? Discover Purina One Hydralife and help support their daily hydration with a taste they'll enjoy. Purina One Hydralife. Make it easy.
0: Anissa Nasir. Live across Greater London with The Big Show. Like a
3: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
6: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर. टू बुक कॉल 0208 514 5400. Online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: हमारी रक्षक है वो.
13: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
14: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये?
13: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September. फॉर UK रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
15: आर यू सिटिंग ऑन अ मॉर्गेज एंड गेटिंग नथिंग बैक? व्हाट इफ योर रीमॉर्गेज पेड यू?
16: एट कैशबैक रीमॉर्गेजेस वी फाइंड यू डील्स दैट पुट रियल मनी बैक इन योर पॉकेट, नॉट जस्ट अ लोअर rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
17: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
16: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
17: Cashback remortgages. Your mortgage should work for you.
0: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe. Artist of the week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही रोमांटिक सा गीत जिसमें कविता कृष्णमूर्ति जी का साथ दे रहे थे कुमार सानू। हमने लिया था फिल्म आ गले लग जा से, नाम भी बड़ा रोमांटिक और गीत भी बहुत रोमांटिक, 1994 की फिल्म और 90s के सभी फैंस के नाम ये प्यारा सा गीत गया। और अब अगला गीत जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे उसकी फरमाइश की है दिलीप सरोज जी आपने, जो कि हॉलीडेज पर हैं लेकिन साथ निभा रहे हैं। डेफिनेटली आपकी पसंद हम आपके नाम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल कहना चाहूँगी कमल भगत जी को, राकेश गोयल जी को और दविंद्र बजाज जी को जालंधर में। जी हाँ, पंजाब इंडिया से उन्होंने मैसेज भिजवाया है। ना सिर्फ मैसेज बल्कि तीनों दोस्तों ने अपनी तस्वीर भी भिजवाई है कि देख लो ऐसा दोस्ताना है हमारा, ऐसा याराना है। सलामत रहे जी आपका दोस्ताना। और ये प्यारा सा गीत हम आपके भी नाम करते हैं। बेहद शुक्रिया कमल भगत जी, हमारे रेगुलर लिसनर। और ये मैसेज है आप सभी के लिए कि फाइनल फ्यू डेज टू गो टू दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। इट टेक प्लेस एट ओवर इन वेम्बली ऑन संडे 27 सितंबर को। डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। टिकट्स अवेलेबल हैं, जल्दी से बंदोबस्त कर लीजिए diwalistory.com के जरिए, जरूर जाइए।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कल रात ख्वाब में तुम्हें देखा उदास सा, कल रात ख्वाब में तुम्हें देखा उदास सा, शब भर तुम्हारे बारे में फिर सोचता रहा। आंखों से कुछ सितारे तुम्हारी तरफ गए, खिड़की से एक चांद मुझे देखता रहा। ये थी दिलीप सरोजी आपकी पसंद। रसीद जल्दी से भिजवाइए। आहिर गुनुआ जी, बेहद शुक्रिया आपके बहुत ही प्यारे से मैसेज के लिए। सुनते रहिए
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: और ये है अनीसा नासिर जो आपको एक और मैसेज जो है वो पहुंचाने जा रही है। मतलब मैं कबूतरी बन गई हूँ ज्यादातर, तो वो ऐसा है कि संजय कपूर और आफ्ताब शिवदासानी जी लाइव उनको देखना चाहते हैं, तो आपके लिए तमाम किया है उसका जेस एंटरटेनमेंट ने। वो लेकर आए हैं बॉलीवुड लेजेंड्स को लाइव इन लंदन विद संजय कपूर। जैसा कि मैंने कहा, आफ्ताब शिवदासानी, सिंगर्स जो हैं वो अमन त्रिखा एंड मयूरी पटालिया। संडे 27 सितंबर एट लेस्टर के जो बहुत ही फेमस सा एक हॉल है, द मॉन्टफोर्ट हॉल, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
6: Hey.
5: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
7: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Get ready, UK. Sunil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
10: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
9: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
10: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
9: For more information, contact 07585-801-801. Official radio पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
11: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी। रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी। कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइस्लिप, HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ। वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22-287-509.
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good classics all day. This is Leica Gold.

0: सुने जाते थे ना तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजबानी देखते जाओ। जहूर साहब ने मैनचेस्टर से सुनना चाहा था इस गीत को, उम्मीद करती हूँ आपने सुन लिया होगा। थी शाम जहर रंग में डूबी हुई खड़ी, थी शाम जहर रंग में डूबी हुई खड़ी, फिर एक जरा सी देर में मंजर बदल गया। मुद्दत के बाद आज उसे देख कर मुनीर एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल गया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 367 Pakistani rupees, 84.6 Afghani, 126.7 Indian rupees, 162.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.12 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: और भी मुझे शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि के मैसेजेस आने शुरू हो गए, यानी मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है। लेकिन जाने से पहले अभी मुझे तीन फरमाइशें पूरी करनी हैं, लिहाजा अगर फरमाइश की है तो टिके रहिएगा रेडियो के आसपास ही, वरना मिस कर जाएंगे। और दोस्तों, मेरे जाने के बाद गोल्ड नाइट का चुना हुआ म्यूज़िक इन्जॉय कीजिएगा। काजल हाजिर हो जाएंगी सुबह ब्रेकफास्ट शो लेकर, और इसी तरह पूरे नेटवर्क पर आपकी सेवा, आपकी खिदमत में हमारे प्रेजेंटर्स आपको एंटरटेन करने के लिए 24 घंटे सातों दिन हाजिर और नाजिर रहेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं नहीं कह रही किसी ह्यूमन डे, ऊपर वाले ने चाहा तो कल मिलते हैं। शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: दिस इज Leica Gold, non-stop classics. Classics. Leica Gold. From Lollywood with love, with Anisa.

0: ये है लाइका गोल्ड। This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
1: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
0: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: फंक्शन रखा हुआ है।
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 Our line.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: विंटर्स कमिंग एंड मेरा बॉयलर pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
9: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
10: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.

0: गोल्ड One performer.
1: इनके सामने का प्रोसेस कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भाई या खिलाड़ियों के खिलाड़ी?
2: Countless personalities.
3: जिंदगी पर बैठोगी या?
0: A whole universe of entertainment.
4: नन्ना फंक्शन रखा हुआ है.
2: Sunil Grover live UK tour 2026.
0: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health. And well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा

0: तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम।
1: ताजा करें अपनी यादें नायका गोल्ड के साथ।